भरल से समय तो बिताए वाले वासे आज कुमारे वस्तु आहार दिया वस्तु आ